0: இப்போது ஆகாஷ்வாணியில் விளம்பர நிறுவனமாக நீங்களும் பதிவு செய்யலாம்.
1: விவரங்களுக்கு தொலைபேசி எண் 044-249-8-64-58 044-249-8-64-58
0: விண்ணப்பங்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரி agncn1@gmail.com agncn1@gmail.com. ஆகாஷ்வாணி வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிகழ்ச்சிகளை நேயர்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். 2 மணி ஆவதற்கு 10 நொடிகள் உள்ளன. இனி ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
3: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
4: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
3: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
4: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
2: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women